सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड्याइया, तुद बिन सिद्धि किने न पाइया, कर्म मिले ना ही ठाक रहाइया, आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवार नहारा, आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख, पुत भूखै खा।

जात खसम विसारह तेकम जात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुरु।

हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत।

जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महल्ला पंजवा, काहे रे मन चित वह उद्दम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक वागै कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। रहाउ जनन पिता लोक सुत।

वै सह कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर कल करिया।

सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम पारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा, हर त्यागो संतोह जी, सब दुख विसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना।

करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब पाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह

सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया।

होए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरडै पहिले निवासा। पाणी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेत समूड मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़िया। मूर्ख मुगदा जन

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दै मुहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतार।

है प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आशुतोष जू करे हो रक्षा राख ले हो मोहि राखन हारे साहिब।

काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोह बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पाट पाट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्क तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूजू चारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, मा मूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा

रंक भयो राव कही पुपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छाह छव सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा।

ये पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुज वास कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहु वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भए सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे, सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवां थाल विच तिन

एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उर तारू, तम संसार चरण लग करिय, सब नानक ब्रह्म

पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरे चढ़ जाहे पाओ जल विकम सुगाहो गुर शब्दी पार पाहे।

संग भव जल तारेन साकत निंदक दुष्ट खिन माहिब दारेन तिस साहिब की टेक नानक मनै माही जिस सिमरत सुख।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

तू सागरो रत्नागरो हौं सार न जाना तेरी राम सार न जाना तू वडदाना कर मेहरम्मत साई कृपा की जय सा मत दी जय आठ पहर तुद त्याई

सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महला तीजा चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए ब्रह्मया अमृत जल पल्ले ना पाए चात्रिक तू ना जानही क्या तुद विच तिखा है कित पीते तिख जाए दूजे पाए ब्रह्मया अमृत जल पल्ले ना पाए

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वास, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोविंद नो सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस रिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै कारण निधि आवै धाए, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज सच्चे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ महाराज, आप जी ने मेहरामत की दाता जी, अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जिया ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दीदार बख्शिश किए, आप जी का कोटि कोटान शुकराना धनवाद सचे पातशाह जीओ। इस वेले रात्रि के दीवाना की समाप्ति हुई, आप जी के सुख आसन की सेवा सोहेला साहब जी के पाठ किए ने, आप जी के दरकर के टहलिया पासों समुचिया सेवावान निभा ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਾਤ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

आद गुर एनम है, जुगाद गुर एनम है, सत गुर एनम है, श्री गुरुदेव एनम है, अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पा

0: रब सिमरत कछ बिघन लागे रब कै सिमरन पहु न व्यापे
1: रब कै सिमरन दुख न संतापे
0: रब का सिमरन साध कै संग
1: सर्वनदान नान कर रंग
0: रब कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध
1: रब कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुध
0: रब कै सिमरन जप तप पूजा
1: रब कै सिमरन बिनसै दूजा
0: रब कै सिमरन तीर्थ स्नानी
1: रब कै सिमरन दरगह मानी
0: रब कै सिमरन होए सुफला।

0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए,
1: अमृत नाम रदमाए समाए,
0: प्रभु जी बसे साध की रसना,
1: नानक जन का दर्शन दसना,
0: प्रभु को सिमरह से तनवंते,
1: प्रभु को सिमरह से पतवंते,
0: प्रभु को सिमरह से जन परवान,
1: प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान,
0: प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे,
1: प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे,
0: प्रभु को सिमरह से सुखवासी,
1: प्रभु को सिमरह से भावनासी,
0: सिमरन ते लागे जिने आप दयाला,
1: नानक जन की मंगर वाला,
0: प्रभु को सिमरह से पर उपकारी,
1: प्रभु को सिमरह तन सदयारी,
0: प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे,
1: प्रभु को सिमरह तन सुख व्यावे,
0: प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता,
1: प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता,
0: प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे।

0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी,
1: कै सिमरन सहज सुमानी,
0: प्रभु कै सिमरन निचले आसन,
1: कै सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभु कै सिमरन अनहद चुनका हार,
1: प्रभु सिमरन कांत नवार,
0: सिमरै सीजन जिनको प्रभु मया,
1: नानक दिन जंदर नी बया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
1: हर सिमरन लग भेद उपाए,
0: हर सिमरन भये सिद्ध जति दाते,
1: हर सिमरन नीच जो गुण जाते,
0: हर सिमरन धारी सब तरना,
2: सिमरन कारण करना,
0: हर सिमरन की

0: का नाम जपत निष्ठर है,
1: अनक माया रंगत गिनाम जावे,
0: हर का नाम जपत आधावे,
1: ये मार्गे जात केला,
0: कै हर नाम संग होत सुहेला,
1: ऐसा नाम मन सदा त्यागिए,
0: नानक गुरमुख परम गत पाइए,
1: टूट नहीं कोट लखवाए,
0: नाम जपत है पार पराई,
1: अनक विगंजय आए संगारे,
0: हर का नाम सदकाल होता है।

0: हलवा की गृह पीतर बसे दृढ़ कर माने मने प्रतीत बैर विरोध काम क्रोध मोह
1: विकार
0: याहू जुगत बिहाने कई जन्म
1: राग ले
0: तू ठाकुर तुम पहर

0: अनेत
1: सरपर होवत जान अनेत
0: निरखी छाया से रम लावे
1: हो बिन सैव मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालनार
1: लपट होता है अंधार
0: गाओ से जो लावे ने
1: ताको हाथ न आवे के
0: मनार के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन तन

0: मंदर
1: तीस अध्याय सदा मन अंदर
0: देह प्रसाद गृह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: देह प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याग ये त्यावन जोग
0: प्रसाद पाठ बटंबर हलावे
1: तिस त्याग तवर लुभावे
0: देह प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पैर ताका जस भावि जय
0: देह प्रसाद सबको मन
1: मुख ताको जस रसन बखाने
0: देह प्रसाद तेरु रहता धर्म
1: मन सदा त्याग केवल पार ब्रह्म
0: जब तक मान पावा
1: नानक पद से ती कह जावे
0: देह प्रसाद आरो कंचन देही
1: निव लावो तिस राम स्नेही
0: देह प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: देह प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
0: देह प्रसाद तुझको न पहुंचे
1: मन सास सास सिमरहु प्रभु ऊचे
0: देह प्रसाद पाई दुर्लभ दे
1: नानक ताकी भगत करे हे
0: देह प्रसाद आपु खन पहरी जय
1: मन तिस सिमरत क्यों वालस की जय
0: देह प्रसाद अश्व हस्त असवारी
1: मन तिस प्रभु को कबहू न बिसारी
0: देह प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख पुरोए प्रभु अपने मना
0: जिन तेरी मनवंत बनाई
1: उठत बैठ सत्य सहते आई
0: सहते आए जो एक अलख है
1: यहाँ उहा नानक तेरी रखे
0: देह प्रसाद करे पुन बोधान
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
0: देह प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभु को साथ साथ चित
0: प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमर हो सदा अनूप
0: प्रसाद तेरनी की जान
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: यह प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुरु प्रसाद नानक जस कह
0: यह प्रसाद सुनह करन नाद
1: यह प्रसाद पिक कह विस्माद
0: यह प्रसाद बोल है अमृत रसना
1: यह प्रसाद सुख सहज बसना
0: यह प्रसाद हस्त कर चल है
1: यह प्रसाद संपूर्ण फल है
0: यह प्रसाद परम गत भाव है
1: यह प्रसाद सुख सहज सुमाव है
0: ऐसा प्रत्याग अवर कत लागो
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो
0: ये प्रसाद तू प्रगट संसार
1: इस प्रभु को मूल न मनो बिसार
0: ये प्रसाद तेरा प्रताप
1: ये मन मूड तू ताको जापो
0: ये प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: किसे जान मन सदा हजूरे
0: ये प्रसाद तू भाव है साच
1: रे मन मेरे तू ता स्यो राच
0: ये प्रसाद सबकी गत होए
1: नानक जाप जपै जप सोए
0: आप जपाए जब

0: कहे सुमुखता सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग मुखु जल होत
1: साध संग मन सकलीक होत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सबोत निवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बनने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रमाय सम्मानी
0: साध के संग गुचर मिले
1: साध के संग सदा प्रफुल
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग हुए सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग सतगुर पावे
0: साध के संग माया ते भिन्न।

0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के रंग
2: ब्रह्म ज्ञानी के
1: नाम उदार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सब जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद।

0: नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना पारस
0: मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: पार त्रय रूप न बिख नेत्र
0: साध के टहल संत संग हेत
1: करन न सुने गाहू की निंदा
0: सब ते जाने आप उसको मंदा
1: पर साध बिखया भर हर
0: मन की वासना मन तीट रह
1: जित पंच दोग ते रह
0: नानक कोट मत देखो ऐसा परस
1: वैसनो सोज सुपर सुप्रसन्न
0: विष्ण की माया ते
1: कर्म कर तो हो गए नह कर्म
0: इस वैष्णव का निर्मल कर्म
1: बाहुबल की इच्छा नहीं बाचा
0: केवल भगत कीर्तन संग्राचा
1: मान धन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: अब्रह नाम जपावे
0: नानको वैष्णव परम गत पावे
1: वाची भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्याग तुष्ट का संग
1: मन ते विनसै सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: साध संग पापा मल खोवे
0: भगवती की मत उत्तम हुए
1: की टहल करा नित नीत
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत
1: चरण हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: पंडित जो मन पर बोध
0: राम नाम आत्म शुद्ध है
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो नया वे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल
0: सुख मैं जाने स्थूल
1: वरना
0: नानक उस पंडित

0: मुक्त पात्र को तार
1: सर्व रोग का औषध नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जोगत के तहना पाई है धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सतराम दास
1: आत्म राम जिस नगरी आया
0: दास दसंतन पाई तिन पाया
1: सदा निकट निकट हर जान
0: सो दास दर गए परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सोजी परे
1: सगल संग आत्म उदास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
0: जीवन मुक्त सो कहावे
1: जैसा हरख तैसा उस सोग
0: सदा आनंद तय नहीं बेयोग
1: जैसा स्वर्ण तैसी उस माटी
0: जैसा अमृत तैसी बिखाटी
1: जैसा मान तैसा अवमान
0: जैसा रंग तैसा राजान
1: जो वरता साई जुगत
0: नान को पुरख कही है जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: चित चित कर रखे तै सा तिन नाओ
1: आपे करन करावन जोग
0: प्रभा वै सोई फुन होग
1: असरे ओ आप होए अनत तरंग
0: लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास
0: पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहे निहाल श्लोक पुस्तक करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट पह तीर्थ वासी
2: कई कोट वन परमे उदासी
0: कई कोट वेद के श्रोते
2: कई कोट भी श्रोते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट नवतन नाम त्याव है कई कोट सहे अभिमानी
1: कई कोट अंध अज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अपेग आत्म निघोर
0: कई कोट पर दर्व को हिर है
1: कई कोट पर दुख न गर है
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश ब्रह्मा है
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: नानकत की जाने का तर्जना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पातर बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी वैसंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट शशि सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत धार
1: नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस्थान।

0: कई कोट जन्म है जी वह मर है,
1: कई कोट बोझो नीव रह,
0: कई कोट बैठत ही खाहे,
1: कई कोट काला तक पाहे,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया मह चिंत,
0: जय जय भाणा तह तह राखे,
1: नानक सब किस प्रभ कह हस्ते,
0: कई कोट भए बैरागी,
1: राम नाम संग तिन लिव लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजंते,
1: आदम में पार ब्रह्म लांते,
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास,
1: जिनको मिलो
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: पार ब्रह्म तिन लागी,
0: इनको हुए आप सो प्रसन्न।

0: नरक पाती होवत स्वान।
1: जो जन मैं जो बनवंत,
0: जो होवत बिष्टा का जंत।
1: आपस कहो कर्म वंत कहावे,
0: जन्म मरै बहु जोन परमावे।
1: धन भूम का जो करे गुमान,
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान।
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे,
0: नानक इहां मुक्ता के सुख पावे।

0: पंत
1: किन में हुए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय किस करे कुवारी
0: गुरु प्रसाद जा का मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दर गए परवान
0: कोट कर्म करे हों धारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आदम नहीं द्रवे
1: हर दर कह कहो कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: किसे भलाई निकट

0: गुरपुर साध नानक हो छूटे।
1: सहस खटे लख कोढ़ तावे,
0: तृप्त न आवे माया पछे पावे।
1: अनेक भोग बिखिया के करे,
0: नह तृप्त आवे खप खप मरे।
1: बिना संतोख नहीं गोराजे,
0: रुपन मनोरथ बृते सब काजे।
1: नाम रंग सर्व सुख होए,
0: बड़ भागी किसे प्राप्त हुए।

0: सब ते दूर सबू कै संग
1: दूजा देखा करे विवेक
0: अनेक
1: मरै न बिन सह आवे न जाए
0: नानक सद ही रहा समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचिया सब कै साथ
1: आप कीनो आपन विस्तार
0: सब कछ उसका करण।

0: कीमत कह ना जाए।
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वखियानी।
1: सच सच सच सब जीना
0: कोट मते किने बिरले चीना।
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप।
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
0: कट कट सुनी श्रवण बखियानी।

0: सत हरि। संत कै दुखन हार जा कटे,
1: संत कै दुखन जमते नहीं छुटे।
0: संत कै दुखन सुख सब जाए,
1: संत कै दुखन नरक में पाए।
0: संत कै दुखन मत हुए मलीन,
1: संत कै दुखन सो बाते।
0: संत के हते को रखे न कोए,
1: संत कै दुखन तान भ्रष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
2: नानक संत संग निंदक भी करे।
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
2: संत कै दुखन काग जो लवे।
0: संतन कै दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत कै दुखन त्रिक जोन करमाए।
0: संतन कै दुखन तृष्णा मह जले,
1: संत कै दुखन

0: जने आवे हर प्रभु जीत
1: अंत भगत सुनिए देह लोए
0: जाके हृदय एक होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत।

0: करे एक रंग
1: नाना बिद किन्नो विस्तार
2: प्रभु बनासी एक अंकार
1: नाना चलत करे किन माहे
0: पूर्ण सबताए
1: नाना बिद कर बणत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
2: जब जब जीवे नानक नाओ
1: नाम के तारे सगले जंत
2: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
2: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
2: नाम के तारे सगल आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन
2: नाम के समुद्र संसवन
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
2: नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सत जा का सत स्थान
2: पुरख सत केवल प्रधान
1: करतूत सत सत जा की बाणी
2: सत पुरख सब माए समानी
1: सत कर्म जा की रचना सत
2: मूल सत सत उत्पत
1: सत करनी निर्मल निर्मली सत नाम प्रभु का सुखदाई
2: विश्वास सत नानक गुर ते पाई
1: सत बचन साधु उपदेश
2: सत तेजन जा कर जय प्रवेश
1: सत नृत बुझे जे कोई
2: नाम जपता की गत होए
1: आप सत किया सब सत
0: आपे जाने अपनी मित गत
1: इसकी सृष्ट सो करने हार
2: अवर न बूझ कत विचार
1: करते की मित न जाने किया
2: नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
1: इस मन विषम पहे विषमा

0: कच भरम
1: सहस सियाण पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबिट भागी पाइए
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत
0: पर सत चरण गत निर्मल रीत
1: पेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दर गवे
1: सुन कर बचन कर्ण आगाने
0: मन संतोखा तुम

0: सत पुरुष पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुँचत प्राणी
0: अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकी कीमत किने न पाई
1: अनक भगत बंधन नित करे
0: चरण कमल हृदय सिमरह
1: सत बलिहारी सत गुरे अपने
0: नानक जिस पर साधु ऐसा प्रभ जपने।

0: ले
1: सच उपदेशे वको दे
0: मोह माया के संग न लेप
1: मन में रखे हर हर एक
0: अंधकार दीपक प्रगासे
1: नानक परम दुख तहते नासे
0: तप्त माहे ठान वरताई
1: अनंत भया दुख न ठेकाई
0: जन्म मरण के मिटे अंधे से
1: साधु के पूर्ण उपदेशे।

0: अस हस्ती रथ सवारी जिन दिए तिस बुझे न बेगाना गुर की मतू ले
1: डूबे सियाने
0: हर की भगत करो मन मीत
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत
0: चरण कमल राखो मन बाहे
1: जन्म जन्म के गल लिख जाहे
0: आप जपहु अवरा नाम जपावहु
1: सुनत कहत रहत वत पावहु
0: सार भूत सत हर को नाओ
1: सहाय नान गुण गाओ
0: गुण गाव तेरी उत्तर समैल
1: बिरस जाए हो मैं बिरस फैल
0: ओहे अचिंत बसै सुख नाल
1: साध राधा नाम समाल
0: साध सियानप सगली मना
1: साध संग पावै तज धना
0: हर पूंजी संच करो बिहार
1: जीवा सब दर गह जयकार
0: सर्व निरंतर एको देख
1: ओ नानक जाकर मस्तक लेख
0: एको जप एको शालाहे
1: एक समर एको मन आह
0: कस के गुण गाओ अनंत
1: मानता जाप एक भगवंत
0: एको एक

0: आठ पहर प्रभु कुह नीरा
1: बैठे अज्ञान बैठे अंधेरा
0: सुन उपदेश हृदय बसावो
1: मन चे नानक फल पावो
0: अलत पलत।

0: अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमतोज कह जय
1: कोट इंद्र इंद्र
0: त्रिपवन मही सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत
1: सर्व नाम कथा।

0: चतुर्चक्र करता चतुर्चक्र हरता
1: चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने
0: चतुर्चक्र भरती चतुर्चक्र पाती
1: चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले
0: चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र मासे
1: चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने।

0: फनेन्दने साचर पूत पवेख पवान जपेंगे
1: देव जपे जाल में थाल में पाल ही पाल में सब धाम समेंगे
0: उन पर तापन बाढ़ जैत तुन पापन के बह पुंज खपेंगे
1: आज समूह पर सन जग सत सब अवलोक जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरा कप जौन त्रिलोक

0: कर यचन उपजायो।
1: आद अंत एक अवतारा,
0: सोई गुरु समझो हमारा।
1: नमस्कार ते सही को हमारी,
0: सगल प्रजाजन आप सवारी।
1: जीवकन को सब गुण सुख दियो,
0: सत्रन को पाल मोह बाद कियो।
1: कट कट के अंतर की जानत,
0: भले बुरे की पीर पिछानत।
1: कुंचर सोला,
0: सब पर कृपा देश कर भूला।
1: संतन दुख पाए ते दुखी,
0: सुख पाए साधन के सुखी।
1: पीर पिछाने
0: घट घट पट पट की जाना।
1: जब उद कर करा कर तारा,
0: प्रजा तट सब दे अपारा।
1: जब आकर कर तुम

बेअंत बेअंत भुलां दी खिमा कर देनी रहमत करनी अगे तो सिर ते मेहर भरिया हथ रख के बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दी दात बख्शिश करनी सतगुरु जीओ अमृत वेले बेअंत संगता ने आप जी के पावन दर घर दियां हाजरियां भरियां तिल फुल पेटावा माया आप जी के चरणा विच भेट कीती कृपा करनी समूह संगत दी हाजरी भेटा दर प्रवान करनी दरों घरों नामदान गुरसिखी जीवन चढ़ती कला बख्शिश करके निवाजना किरत कमाइया विच वाधे पाउणे घरां परिवारां विच सुख वरताउणी रहमतां करनियां सतगुरु जी बच्चियां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना गुरसिखी दी दात विद्या दी दात बख्शिश करना बेअंत संगतां ने मीडिया दे माध्यम राहीं

सतगुरु जी आप जी ने सबना दियां हाजरियां सेवावां दर ते प्रवान करनियां सबना नू चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना अपने सेवादार टहलियां सिंघां दे सिर ते मेर भरिया हथ रखना काम क्रोध लोभ अहंकार तो बचाउणा श्रद्धा भावना प्रीत वसै दर घर दी सेवा दे योग बनाउणा हर मैदान फतेह बख्शिश करनी चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजना सतगुरु जी कृपा करनी इसे तरह सिख कौम दे सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के अपनी बाणी बाणी दा प्रचार अते प्रसार करवा लेना रहमता करनिया गरीब नवाज इस वक्त आप जी के हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे जी कृपा करो दर आई संगत नूं निवाजदे होए पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध प्रदान करो पावन हजूरी विच अगले दीवान सजाउण दी आग्या होवे सिख पढ़दे सुणदे सरबत लाहेवंद

गुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो अमृत वेले गुरु दरबार गुरु चरणा की हाजरी भर रहे हो। सतगुरु जी ने कृपा की है, आप जिया ने पावन पवित्र बाणिया के पाठ सरवण किए हैं, अरदास शामिल होए हो। उपरंत अज दे इलाही दरगाही श्री मुखवाक जो सोरट राग विच पंचम पातशाह जी ने बख्शिश किए हैं, आप जी ने सरवण किए हैं। सतगुरु जी कृपा करन सबना नू दरों करों चढ़दी कला गुरसिखी जीवन नामदान बख्शिश करन। अज एतवार दा दिहाड़ा है जो सारा दिन सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच दरबार सजदे हन। विशेष करके अज जो साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस है, जो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने दमदमा साहिब की धरती से बठिंडे की धरती से अज दे दिन 1706 ईस्वी नू गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी विच शामिल करके दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने संपूर्णता बख्शिश की सी। संपादना गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी ने सन 1604 विच कीती सी। उस विच पांच गुरु साहबाना की बाणी सी, पट साहबाना की, भगतां की, गुरसिखा की, पर दसम पातशाह जी ने 1706 ईस्वी विच जो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी सी वह भी विच दर्ज की, इस संपूर्णता बख्शिश की। इस करके अज का दिन संपूर्णता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो अज दे सारे दिन के दीवान गुरु साहब सच्चे पातशाह जी की संपूर्णता दिवस में समर्पित होंगे। उत्थे सारा महीना ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की संपूर्णता ही समर्पित किया गया है, जिस विच विशेष प्रोग्राम लिखे गए हैं। 12 और 13 अगस्त को राग दरबार हो रहा है, जिस विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच शामिल रागां दे आधारित बाणी का कीर्तन होएगा, राग निर्धारित बाणी का कीर्तन होएगा। नाल ही यह सारा महीना जो साडे पास सत्कारयोग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी पहुंच रहे हैं, शाम नू जपजी साहब जी की बाणी की कथा करिया करनगे। जपजी साहब जी की बाणी की कथा ते संथिया भी तकरीबन इस महीने विच दो सैशन रखे जाणगे। उन्हां विच भी संगत नू बेनती है कि आप जी ने वध चढ़ के हाजरियां भर के बाणी नाल जुड़ के आपां गुरु वाले बन के सतगुरां दीआं खुशियां प्राप्त करिए जी। सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। आओ हुण प्यार सहित अमृत बाणी दा कीर्तन सत्कारयोग भाई साहिब भाई ओंकार सिंह जी अते उन्हां दा जथा आप जी नू सरवण।

ज्ञानी नचै वधे वावे रूप करे सिगार। ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मुख द्वार। जति सदावे जुगत न जाने छड़ बह कर बार। सबको बुरा पे होवे कट न कोई आखे। पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तोलिया जा।

पाणी पिता माता धरत महतु दिवस रात दुहिदाई दया खेलें सगल जगत चंगियां बुरियां आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम तिहाया गए मस

शासन है जी। बोलो जी, वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास कृपाचे दसवीं प्रेम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई तो सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है घर नौने आवे सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्रात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के घर तक बोलो जी वाहे ग्रीवराज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जपियां जपियां जिन्हें नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई तेग भाई दे के डिट किया इतना प्यारे सत्यारे की कमाई दर्द अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जिन्ना सिंह सिंगड़िया धर्म हे सी दिते बदमान कटवाए खूपरिया लाइया चरखड़िया से चढ़े आड़ न चढ़ाए गए गुरुद्वार सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सिखी से देखे सात सात संघ निभाए ते नानी कमाई दर्द अंतर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा तख्त गुरुद्वार दर्दे अंतर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चिता वह चित आमण का सद का सद सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब रचाए देख देख की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बुरबाले बोलो जी वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि यहां चंडे बुंगे जुग जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा का मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की मिलवाज पंथ सदा शाह दार जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब गुरु गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ को छोड़िया गया दर्शन की दात से अठमाल का दान अपने खालसा जी ने बख्शो ये न्योटिया जी ओट गुरु न्यासियां आसरे गुरु तान तन बुलंद तार पिता जी आप चन कमल राम दार पिता जी आप जी बख्शिश हुए सचे पातशाह जी गरीब नवाज ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी पोथी परमेश्वर का थान वाह वाह बाणी निरंकारा तिस जेवड़ अवर न कोय तान ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी अज आप का संपूर्णता दिवस सचे पातशाह जी गुरु साहब जी का तान तन गुरु कलगिया वाले सचे पातशाह जिन्हों ने महान मेहनत बख्शिश करके गरीब नवाज अपने कार्या संसार न एक महान दाद बख्शिश कीजिए ग्रंथ साहब जी स्कूल का बख्शिश करके गुरु महाराज आज संकटा निचे पासे जो कल्याण वास्ते उन्होंने महान दाद बख्शिश की है उन्होंने कोटर कोट धनबाद हरि ग्रंथ साहब सचे पातशाह जी आप भी चरणा जी दाल पेज आप कृपा करो समूह संकटा संसार निचे पातशाह जी अपने चरणा ने जोड़ना गुरबाणी का प्यार बख्शिश करना अपने चरणा बख्शिश करके सरबाद के भरे दाल बख्शिश करने का कृपा करो सचे पातशाह जी तू संकत संसार भर दिन संकत आप पित्र चरण बस रही ने नर्तक हो रही ने दर्शन कर रही कृपा लतार सब सिर से मेरे प्रजात रखना सब चाहिए कला बख्शो अपने चैनल बाणी से बाणे की दाल बख्शी अभ्यास करो जी दतार मेरे को सचे पातशाह जी हो दतार जी इन्होंने खुशियां आप दखियां दातों पत्रकड़ा विशाल जी देगा त्याग हाल दतार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद सात संघ की रसना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जब बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी सचे पातशाह जी हो आप जी बख्शिया दातों जो लंगर तुर सेवा जी प्रबंध करनी दतार आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैल दिए संघा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कर बख्शो और सदा आई इसे तरह अपने चरणा सेवा दी दाल बख्शी दरबारता करनी मेहनत दता दियो अमृत वेल तो लैके दाते आई सात संगत जी दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगत का दर से तिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु साहब सचे पातशाह जी मेहनत दता छे कौन खालसा पंथ एक दरबार प्यार बख्शी करके सत लोई दाल बख्शो चाहना ना जोड़ो गुरुआन प्यार बख्शी बख्श कर दता हर मैदान दुआन फद बख्शी पालता करो जी गुरु जी महाराज बख्श करो सचे पातशाह जी हो समूह संगत अज तार पिता जी हो आप जसमो दस मना रही ने कृपा करो गुरु महाराज आने वाले समय संगत ने बरबुदी बख्श करनी हिम्मत बख्श करनी दाल बख्श करनी सारे प्रबंध चाली का नौ देने वास्ते बड़ी दाल बख्शो भावना ही दाल बख्शो दता अपने चैनल से प्रीति बखरी पालता करनी दाल बख्शे करो सचे पातशाह हो आप डर के साथ करो सचे पातशाह जी समरजीत सिंह रूप बल्दी आत्म शांति वास्ते गरीब नवाज आप चरण श्रद्धा रूप सिंह परिवार को अरदास बेनती की जानी कृपा दता जी हो रूबल जी आत्मा चरणा निवास बख्शो
ਠੰਡ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰਦ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਸਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕਰਨੀ ਬੈਠੀ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਦਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਘੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਉਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਪੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਸਬਰ ਕਰੋ ਘੱਟ ਵਾਧ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਦਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜੀ ਸਰਬੰਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੂਰਬਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਚੰਨ ਕੇ ਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਸੇਵਾ ਲਾਣੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿਖਰ ਗੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਬਰਗੜ ਗੁਣਾ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ

कि सारे पदार्थ जो सानू चाहिदा गुरु चेतन है, गुरु सानू सारे पदार्थ दिंदा है। जेड़ा गुरु दा बन जांदा है, गुरु उन्हूं चार पदार्थ देत नवार, देर नहीं लांदा, सब कुछ आ जांदा चार पदार्थां विच। धर्मी किवें बनना है, अर्थ शास्त्री अर्थ दा अर्थ है, संसार दी माया किवें आवे, उह वी बाणी दसदी है कि किवें होना चाहिदा। तेरे कोल सारा कुछ, भावें मोतियां दे महल बना लै, काम कामनावां तेरियां केड़ियां चंगियां ने जिहड़ियां तेरिया ते तेरे संसार दा भला करनगियां। फिर मुक्ति, तेनूं मुक्त कर देगा जे तू धर्म तो अपना जीवन शुरू करेगा, ते धर्म गुरु दी बाणी तो ही प्रारंभ होना है। सो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी, दतार पिता जी दे अनन सिख भाई गुरुदास ने कहा कि सकल पदार्थ गुरबाणी बिखे, सारे पदार्थ ने गुरबाणी विच, जोई जोई खोजे सोई सोई निप जावई। जिवें दा कोई खोजेगा, जिवें हंस टुब्बी मार के समुंदर चो मोती कढ लैंदा है, खनवारा खान विचों हीरा कढ लैंदा है, सुभासी दा अर्थ है खुशबुआं लैण वाला, अत्र लैण वाला, रुखां फुल्लां चो अत्र कढ लैंदा है। कहिंदे इसे तरह सिख बाणी दे विचों जीवन लभ लैंदा है, बाणी दे विचों आनंद लभ लैंदा है, बाणी विचों सुकून लभ लैंदा है। ते जिन्हू सार नहीं, वह फिर भावें बाणी दे कोल बैठा आवे, वह तो सो कह सकता भी ते गाया जा रहा, पता नहीं की गाया जा रहा। भाई बाबा कबीर जी ने कहा ना कि एक लोग सोचते ने लोग जाना है, यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, पर हकीकत विच ब्रह्म नाल जुड़न दी विचार सिखांदी है गुरबाणी। ज्यों कांसी उपदेश होए मानस बरती बार, जिवें मानस नूं कांसी विच मरण लग्या उपदेश देख के मुक्त किया जाता सी ना, गुरबाणी सिख नूं मरण तो बाद मुक्त नहीं करदी, गुरबाणी सिख नूं जिउंदे जी मुक्त करदी है कि अपनियां वासनावां तों, अपने बंधना तों, अपने विषयां तों किवें मुक्त होना है, अपने आप नूं किवें आजाद कराना है, यह गुरबाणी सानूं सिखांदी है। तां गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी ने बचन कहे ने कि शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरान। शब्द तो बिना असी बोले हम, दुनियावी शब्द असी ना किसी नूं सुनाईए ते ना सुनीए ते संसार विच असी बौले हो जांगे ना, संसार विच नेरा पै जाएगा साडे लई भी ना सानू किसी ने बोलना, जे बोलना ना आवे ते ना किसी दा सुनना आवे। इसे तरह अध्यात्मक जगत दे लई भी ओ बंदा अन्ना बोला है जिदे कोल गुरु दा शब्द नहीं। असी संसार दे विच शब्द तो बिना नहीं रह सकते, पर इसे तरह सानू निरंकार दे घर जाण दे लई भी शब्द दी लोड़ है, ते ओ शब्द प्रेम दा शब्द, गुरु दा शब्द है जिहड़ा सानू धुर तक लैके जांदा, क्योंकि धुर दा है दरगाही है, दरगाही बाणी दरगाह नाल ही जोड़दी है। इस करके गुरबाणी दा अदब, गुरबाणी दा सत्कार, गुरबाणी दा भाव ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਉ ਤੇ ਭਾਉ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿਵਸ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਮਿਕਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।